सायनम् शतयोजन शत शतयोजन शरधिनियोजन शरपरिलंघन रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति सायनम्।

चायन शतयोजन शतशतयोजन शरति नियोजन शर परिलंघन हरिभाजन हरि हरिभाजन हरिमदभाजन दशमुख कंपन बड़वाकृत बड़ बड़